0: खाती हला हेतरियानी हम आला थले बने ई खाती हाले हम आला थले आले खाती हला हे के थ्रियाना बाहती दाले वेले लो असुते बड़ा खडनवा निबा हे मेने ले थे बाहती दाले सोए नवतल दिन असुते बल येशु स्वास के नाम में फले आऊ
1: देखे नमा खाती दा रे तेरे बे
0: ई हम आला के थियाले हम आखी
1: बे दे दे रवा दिला हालेलुया
0: केतेलिया माला माती हाना हेले केतेलिया मेले माथिलिया ले ओबरे सुदिवेवा स्वामी इन बात ओबान सी उदाउ करन ने किने